0: कई अब गई जो चेतना को चुकी बालू लाख जता ततई अब गई जो चेतना को चुकी नारी होस अथवा कुनै पुरुष नै होसे उचाई ढुक ढुकी नारी होस अथवा कुनै पुरुष नै होसे उचाई ढुक ढुकी।
1: आजको कविता,
2: आजको कविता।

0: जलजला बहुमुखी कैंपस में नया शैक्षिक सत्र को लागि भर्ना खुल्यो।
1: मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय को आंगिक कैंपस एस जलजला बहुमुखी कैंपस लिबा गोल्पा में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि सन् 2026 ब्याच को स्नातक तह अन्तर्गत शिक्षा शास्त्र संकाय व्यवस्थापन संकाय र मानविकी संकाय में नया भर्ना खुलेकाले प्लस टू पास गरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई समयमा भर्ना भई मौका को फायदा उठाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: पढ़ाई हुने संकाय र विषयहरू शिक्षा शास्त्र।

0: हेलो
1: यो हो कार्यक्रम हेलो जलजला।
2: प्रत्येक दिन दिउँसो 2:15 to 3 PM
3: तपाईँको प्रिय रेडियो स्टेशन रेडियो जलजला
1: 96.4 MHz मा सुन्न नभुल्नुहोला
3: कार्यक्रम हेलो जलजला।

0: जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर प्रधान अध्यापक 98578 42 011
1: प्रदेश स्थापित सामुदायिक विद्यालय श्री आदर्श नमूना माध्यमिक विद्यालय राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटिया देउखरीदा।

पलिलाए हमी माय गर तो शिखर को ऊंचाई मा जस बस बात मन से जिंदगी लाए हमी माया गर जो हमी माया गर जो हमी माया गर जो हमी माया